0: लड़की शहर में नहीं हो, सुंदर हो, क्यूट लग रही हो, वैसे सिंगल हूँ दिल का भी अच्छा, क्या हस्बैंड ढूंढ रही हो,
1: कुछ भी करा रहा हूँ हमसे कहना, यहाँ के डाउन है।

0: Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian Radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS Audio app or website.
1: अखा ना जरा भी अखा होर की तेनू देख के बदल गई तोर जी नी चढ़ी जांदी लोर लोर लोर लोर जी नी चढ़ी जांदी लोर लोर लोर लोर जी पहला लंघ दी दिहाड़ी।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS की उर्दू नशरियात सुनिए मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर. SBS उर्दू फर्स्ट नेशन बाशिंदों को इस सरजमीन के रवायती मालकान के तौर पर तस्लीम करना चाहता है जहां से हम आज का प्रोग्राम नशर कर रहे हैं. SBS उर्दू इस ज़मीन के माजी और हाल के वारिसों और उनके आबाओ अजदाद को तस्लीम करने के साथ एबोरिजिनल और टॉरेस आइलैंडर्स को भी यहां के रवायती मालकान के तौर पर तस्लीम करता है. अस्सलाम वालेकुम. आज 27 मई है 2026 और बुध का दिन है और हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद. हमें यकीन है कि आप अपने अजीज़ रिश्तेदारों और कराबतदारों दोस्त अहबाब के साथ एक अच्छा दिन गुजार रहे होंगे. ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अक्सरियत मुसलमानों की आज ईद उल अज़हा मना रही है और दुनिया में भी बहुत जगहों पर इस वक्त ईद उल अज़हा के त्यौहार का जोश खरोश पाया जाता है और जो हाजी इस वक्त पहुँचे हुए हैं हज करने के लिए वो भी अपने मनासिक के आखिरी मराहिल में हैं. तो आज जिक्र रहेगा SBS के इस खसूसी प्रोग्राम में ईद उल अज़हा और कुर्बानी के हवाले से बहुत सी बातें आपके लिए लेके आएंगे कि लोग किस तरह रूहानी सफ़र करना चाहते हैं मगर कॉस्ट ऑफ लिविंग या महंगाई या अखराजात के बढ़ते हुए दबाव के बायस ऑस्ट्रेलिया में कितना महंगा होता जा रहा है हज करना, यानी ये लोगों की इस्तेतात से बाहर होता जा रहा है. इसके बारे में बातचीत होगी. इसके अलावा आप ये भी सुन सकेंगे कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए आप कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देते हैं. ये हमारा रेगुलर सेगमेंट है. हम पहले भी इस बारे में आपको आगाही दे चुके हैं. आज इसके कुछ हिस्सों की झलकियाँ आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे आज के प्रोग्राम में और साथ में ये कुछ हमदिया कलाम, नातिया कलाम और सूफियाना कलाम प्रोग्राम का हिस्सा रहेगा. मालूमाती सेगमेंट भी प्रोग्राम में हम आपके लिए ज़रूर लेकर आते हैं और आज भी लेकर आए हैं. ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन में आज आप सुनिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल और ईंधन की इकसाम की गाइड से आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी गाड़ी के लिए कौन सा पेट्रोल या फ्यूल सबसे बेहतर है. जी हाँ, आजकल आपको मालूम ही है कि पेट्रोल की कीमतें बहुत ऊपर पहुँची हुई हैं, तो यकीनन ये गाइड आपके लिए मददगार साबित होगी. और भी बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में शामिल रहेगा मगर हम सबसे पहले न्यूज़ फ्लैश या मुख्तसर ख़बरों का एक बुलेटिन आपके लिए लेकर आते हैं. आइए पहले सुनते हैं यही मुख्तसर ख़बरों का बुलेटिन. सत्ताईस मई बरोज बुध की मुख्तसर ख़बरों के साथ मैं हूँ रेहान अलवी. वफाकी हुकूमत मुलाजमत से मुतालिक खिदमात और सर्विसेज के निज़ाम में गुज़िश्ता तीन दहाइयों की सबसे बड़ी तब्दीलियों का ऐलान कर रही है. वर्क प्लेस की वज़ीर अमांडा रिश्वर्ट ने आज नेशनल प्रेस क्लब में अपनी तकरीर के दौरान इन तब्दीलियों का ऐलान किया जिनमें तीन दर्जों पर मुश्तमिल मावनती निज़ाम शामिल होगा जबकि काम करने की उम्र के ऑस्ट्रेलियन शहरियों के लिए इत्तेहादी हुकूमत के साबका दौर के सख्त फलाही कवानीन का खात्मा किया जाएगा. म्यूचुअल ऑब्लिगेशन सिस्टम के खिलाफ तवील अरसे से शिकायत सामने आती रही हैं जिनमें मुहतसिब की दो रिपोर्ट्स भी शामिल हैं. इन रिपोर्टों में मुलाजमत तलाश करने की शरायत पूरी न करने पर मुतादिद अफराद की फलाही अदायगियां मुअत्तल करना मुमकिन तौर पर गैरकानूनी करार दिया गया था. वेस्ट पैक पर माली मुश्किलात का सामना करने वाले सार्फीन की मुनासिब मावनत और मदद न करने पर $26 मिलियन का जुर्माना आयद किया गया है. वफाकी अदालत के जज ने कहा कि अगरचे बैंक का रवैया दानिस्ता या जानबूझकर नहीं था लेकिन उससे कई कमज़ोर और हसास सार्फीन मुतासिर हुए और यह सूरतहाल एक तवील अरसे तक जारी रही. बैंक को 6 वर्षों के दौरान 200 ऑनलाइन दरखास्तें मौसूल हुईं जिनमें सार्फीन ने होम लोन, क्रेडिट कार्ड, जाती कर्जों, कार लोन और दीगर माली जिम्मेदारियों की अदायगी में मुश्किलात की निशानदही की. ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट्स कमीशन की नायब चेयरपर्सन सारा कोर्ट का कहना है कि जुर्माना वेस्टपैक और दीगर कर्ज देने वाले इदारों के लिए वाज़े पैगाम है कि माली मदद के ख्वाहां सार्फीन के साथ बेहतर अंदाज में पेश आया जाए. इंसिदाद दहशतगर्दी टास्क फोर्स और पुलिस मुश्तरका तौर पर ऑस्ट्रेलियन खवातीन और बच्चों के एक ग्रुप की तहकीकात कर रही है जिनके IS ग्रुप से रवाबित रहे हैं और जो सिडनी और मेलबर्न हाल ही में वापस लौटे हैं. ख्याल किया जा रहा है कि ये ग्रुप शाम के अल रवि कैंप में मौजूद आखिरी ऑस्ट्रेलियन शहरी थे, जहां 2019 से आईएस ग्रुप के जंगजू के खानदानों को रखा गया था। वजीर दाखला टोनी बर्क का कहना है कि हुकूमत ने इस ग्रुप की कोई मदद नहीं की और किसी फर्द ने जुर्म किया है तो इसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। लिबरल पार्टी के रुकन पार्लियामेंट फिलिप थॉमसन का कहना था कि वो इस ग्रुप की ऑस्ट्रेलिया वापसी की हिमायत नहीं करते। नेशनल एंटी करप्शन कमीशन को इस बात की तहकीकात के लिए दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं कि गुज़िश्ता माह विक्टोरिया क्रॉस हासिल करने वाले बैन रॉबर्ट्स स्मिथ की सिडनी एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी के बारे में मीडिया इदारों को पेशगी मालूमात किस तरह मिली। ऑफिस ऑफ द स्पेशल इन्वेस्टिगेटर के डायरेक्टर जनरल क्रिस मोरेट्स ने सेनेट इजलास में बताया कि इदारे ने ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस के साथ मुश्तरक तौर पर नेशनल एंटी करप्शन कमीशन को रेफरल भेजा है। याद रहे कि बैन रॉबर्ट्स स्मिथ अपने खिलाफ आयद इल्जामात को मुस्तरद करते हैं, जिनमें मुतादिद जंगी जराइम शामिल हैं। अमेरिकन सेंट्रल कमांड या सेंटकॉम ने इन मीडिया रिपोर्ट्स को गलत करार दिया है, जिनमें दावा किया गया है कि अमरीकी बहरिया ने आबनाए हरमस से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों की रहनुमाई या मामलत का अमल दोबारा शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ ईरानी सदर ने कहा है कि ईरान जंग के खात्मे के लिए एक बावकार फ्रेमवर्क के हुसूल के लिए तैयार है। अमरीकी वजीर खारजा का कहना है कि ईरान के साथ मुआहदा अब भी मुमकिन है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले किया जाएगा या ईरान के साथ मिलकर वहीं तबाह कर दिया जाएगा। ईरानी सदर ने कहा है कि मुल्क में इंटरनेट की बहाली कर दी गई है, और दूसरी तरफ इसराइली वजीर आजम का लबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ हमले सख्त करने का ऐलान भी सामने आया है। जॉश एंगल्स पाकिस्तान में होने वाली आइंदा वनडे इंटरनेशनल सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की क्यादत करेंगे, क्योंकि मिचेल मार्श इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान टखने की इंजरी के बायस टीम से बाहर हो गए हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के तर्जुमान का कहना है कि मार्श पर्थ में मजीद मुआयने और इलाज करवाएंगे, जबकि बांग्लादेश के वाइड बॉल दौरे के लिए उनकी दस्तयाबी का फैसला बाद में किया जाएगा। यहीं पर न्यूज़ फ्लैश या मुख्तसर खबरें ख़त्म करते हैं। मैं हूँ रेहान अलवी, आप हैं SBS उर्दू के साथ। ताज़ा तरीन मालूमात के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए। आप ईद उल अज़हा के खुसूसी प्रोग्राम के साथ रेहान अलवी के साथ हैं। आज हम ईद के हवाले से बहुत सी बातें करेंगे, जिनमें आप सुन सकेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में मुकीम मुसलमान ईद उल अज़हा पर किस तरीके से कुर्बानी के इंतजाम कर रहे हैं। बहुत से ख़ानदानों के लिए हज की तैयारी में बरसों की बचत, मनसूबाबंदी और कुर्बानियाँ शामिल होती हैं, तो जानेंगे कि कई ऑस्ट्रेलियन मुसलमानों के लिए हज करना दुश्वार तरीन क्यों होता जा रहा है। इसके अलावा आपको बहुत से गीत और सूफियाना कलाम और नातिया और हमदिया कलाम भी सुनवाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल और ईंधन की इकसाम की गाइड से भी आपको ये मदद मिल सकेगी कि गाड़ी के लिए आपकी कौन सा पेट्रोल सबसे बेहतर है। ये हमारी ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन का हिस्सा है, और पाकिस्तान भी आपको लिए चलेंगे, जहां से हम आपको सुनवाएंगे कि अगर ख्वातीन बाइक चलाना सीख जाएं तो किसी के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं रहती, वो कहीं भी किसी भी वक्त आने जाने में खुद मुख्तार हो जाती हैं, और पाकिस्तान के कई शहरों की सड़कों पर बाइक सवार लड़कियाँ अब मोटरसाइकिल चलाती नज़र आती हैं। इस सिलसिले में भी आप एक सोशल रिपोर्ट सुन सकेंगे आगे चलकर। मगर आइए पहले रूहानी सफ़र का जिक्र करते हैं। बहुत से लोग इस वक्त हज पर गए हुए हैं और नए जज्बों की जोत जगा रहे हैं। इसी तरह नादगोई और सना खवानी भी रूहानी जज्बों का एक ऐसा इजहार है जो दिलों पर असर करता है। आइए इस वक्त आपको सुनवाते हैं जवाद अहमद की आवाज़ में नाते रसूल मकबूल।

0: अभी आप अली ज़फ़र की आवाज़ में सुन रहे थे नात रसूल मकबूल। एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो मालूमाती सेगमेंट आपको सुनवाएंगे। जी हाँ, सुनिएगा कि आपकी गाड़ी के लिए कौन सा पेट्रोल बेहतर है। ये है हमारी ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन की फ्यूल गाइड। और पहले वक्फे की तरफ।
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: SBS South Asian plays hit.

0: SBS South Asian, your news from here and hits from home.
1: साइकिलिंग, मोटर स्पोर्ट, वर्ल्ड एथलेटिक्स और दीगर खेलों के दीवानों की पहली मंजिल SBS Sports, sbs.com.au/sports पर जाइए।
2: SBS रेडियो से लुत्फंदोज हो रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज पर गुफ्तगू करें, हमें पसंद करें और अपने ख्यालात का इजहार करें। SBS उर्दू फेसबुक पर।
3: आप ऑस्ट्रेलिया को जानने में मदद के लिए SBS ऑडियो का तैयार करदा पॉडकास्ट ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन सुन रहे हैं।
4: दीगर ममालिक की तरह ऑस्ट्रेलिया भर में ड्राइवर्स को पेट्रोल पंप पर ज्यादा कीमत अदा करना पड़ रही है। ईंधन और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बायस आम ऑस्ट्रेलियन के लिए बजट बनाना और मुश्किल हो गया है। तो क्या गाड़ी में पेट्रोल भरवाते वक्त सस्ता पेट्रोल मुंतखब करवाना बेहतर फैसला है? इसका जवाब आपकी गाड़ी के इंजन की ज़रूरियात पर मुनहसर है, क्योंकि हर किस्म का पेट्रोल हर गाड़ी के लिए मौजू नहीं होता। आइए जानते हैं माहिरीन इस बारे में क्या बताते हैं। ऑस्ट्रेलियन सर्विस स्टेशंस पर दस्तियाब ईंधन या पेट्रोल की अहम इकसाम में मुख्तलिफ ग्रेड के पेट्रोल इस्तेमाल होते हैं। इनमें डीजल और इनमें डीजल भी शामिल है। पेट्रोल की तीन बुनियादी इकसाम में E10 पेट्रोल, एथेनॉल मिला पेट्रोल जिसे कहते हैं, अनलीडेड पेट्रोल यानी बगैर शीशे वाला पेट्रोल और 91 ऑक्टेन ईंधन पेट्रोल जिसे रेगुलर अनलीडेड पेट्रोल कहा जाता है, ये आमतौर पर सर्विस स्टेशन पर दस्तियाब होते हैं, जबकि प्रीमियम क्वालिटी में अनलीडेड 95 ऑक्टेन और 98 ऑक्टेन ईंधन भी दस्तियाब है। यह आदाद मुख्तलिफ किस्म की पेट्रोल पंपों पर हिसाब के मुख्तलिफ तरीकों की वजह से कुछ मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन ये बैन अक्वामी तौर पर हम आहंग हैं, ये कहना है जैक एमन का, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं।
5: So if you go to the US for instance, you'll see low, medium and high grade octane are traditionally labeled 87, 89 and 91. Here it's 91, 95, 98. In each case, it's simply how the government is choosing to calculate it, but the truth of the matter is ultimately these are internationally harmonized.
4: रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब ऑफ विक्टोरिया के पॉलिसी के सरबराह जेम्स विलियम वजाहत करते हुए कहते हैं कि ऑक्टेन रेटिंग ईंधन की मज़ाहमत को जाहिर करती है।
6: So the octane number on the bows shows how resistant a fuel is to what they call engine knock. The higher the number, it means that the higher the quality of the fuel is.
4: अगर ऑक्टेन का नंबर ज्यादा है यानी उसकी रेटिंग हाई है तो उसकी कीमत भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लो ऑक्टेन वाले पेट्रोल बेहतर इंजन कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। मिस्टर विलियम्स कहते हैं कि अगर आप हाई परफॉर्मेंस या स्पोर्ट्स गाड़ी नहीं चला रहे तो 91 अनलीडेड उमूमन फी लीटर ज्यादा फासला तय करने के एतबार से सबसे कम खर्च इंतखाब होता है।
6: So if you're driving a conventional vehicle, say a small to medium SUV or a hatchback, you will get as much fuel efficiency out of 91 as you will 98. And of course 91 should be cheaper.
4: दूसरी तरफ अगर आपकी गाड़ी हाई ऑक्टेन के लिए तैयार की गई है तो उसमें 91 इस्तेमाल करने का मशवरा नहीं दिया जाता। आपकी गाड़ी के फ्यूल कैप के अंदर या मैनुअल में वो ऑक्टेन रेटिंग दर्ज होती है जिसकी मैन्युफैक्चरर सिफारिश करता है।
6: That if you do use the incorrect petrol type, this can affect not only your fuel efficiency and how far you can go with your vehicle, but also running costs and over time wear and tear and damage to your engine.
4: गाड़ी के recommended petrol के बजाय कोई और petrol इस्तेमाल करना गाड़ी के engine के लिए नुकसानदेह हो सकता है, और साथ ही ये भी याद रखिए कि कभी भी diesel गाड़ी में petrol और petrol गाड़ी में diesel नहीं डाला जा सकता। अगर आपकी गाड़ी diesel पर चलती है तो आपकी manufacturer कंपनी आपको बताएगी कि आया आपकी गाड़ी बायोडीजल के लिए मौजू है या नहीं। बायोडीजल एक काबिल तजदीद और तहलील होने वाला ईंधन है। अगर आपकी डीजल से चलने वाली गाड़ी बायो डीजल के लिए मुनासिब नहीं है तो उसमें बायोडीजल नहीं डालना चाहिए। और अब बात करें E10 पेट्रोल की। E10 पेट्रोल में एथेनॉल शामिल होता है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा आम एथेनॉल पेट्रोल मिक्सचर पौधों से हासिल करदा ईंधन है जो E10 में शामिल होता है और इसे 90% अनलीडेड पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है। इसकी ऑक्टेन रेटिंग ज़्यादा होती है और पेट्रोल पंप पर यह निस्बतन सस्ता भी होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यह आपकी गाड़ी के लिए मजमूई तौर पर ईंधन की बचत भी करे। प्रोफेसर एमन इसकी वजाहत करते हैं।
5: Adding a little bit of ethanol increases the octane rating, so for the same volume of fuel, you actually get a bit more punch out of the car. The only downside to putting E10 in is that you tend to go through fuel a little bit faster. So you're going to notice about a 3% increase in the amount of fuel you consume per 100 kilometers you travel. But it has a cheaper price, and those two things equilibrate out.
4: ये जानने के लिए कि आपकी गाड़ी में E10 या ethanol 10 वाला पेट्रोल पड़ सकता है या नहीं, अपनी गाड़ी के पेट्रोल लिट के कवर पर लगे हुए स्टिकर को देखें या फिर अपनी गाड़ी के मैन्युफैक्चरर से राब्ता करें या उनकी वेबसाइट के ऊपर अपनी गाड़ी के सही मॉडल नंबर की तफसीलात मालूम करके जानें कि आपकी गाड़ी में E10 इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन पिछले 20 साल से बिकने वाली तमाम गाड़ियां E10 के लिए मौजू हैं। एक आम उसूल यह है कि अगर गाड़ी में कार्बोरेटर लगा हुआ है तो गालिब इम्कान यह है कि वो E10 के लिए मौजू नहीं होगी। RACV मोटरिस्ट को मशवरा देता है कि वो बेहतरीन कीमत के लिए तो मुख्तलिफ पेट्रोल स्टेशन का मुवाजना करें। बजट का ख्याल रखने से पहले ये जरूर जान लीजिए कि आपकी गाड़ी के लिए वही पेट्रोल सबसे सस्ता रहेगा जो आपकी गाड़ी बनाने वाली कंपनी ने उस खास गाड़ी के मॉडल के लिए रिकमेंड किया है।
3: आप SBS ऑडियो का पॉडकास्ट सुन रहे थे। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड की दीगर इकसात सुनने के लिए sbs.com.au/australiaexplained पर जाइए।
4: आप SBS उर्दू के साथ हैं और हम इस वक्त आपको ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन की एक किस्त सुनवा रहे थे, लेकिन इसकी बहुत सी और भी किस्तें मौजूद हैं। बड़े मालूमाती इसमें सेगमेंट्स मौजूद हैं और अगर आप ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन या खुशामदीद ऑस्ट्रेलिया सुनना चाहें sbs.com.au/urdu पर जा सकते हैं। यहाँ एक याद दहानी भी आपको करवा दें कि SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात हर बुध और जुमे को ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न वक्त के मुताबिक सपहर 3 बजे पॉप देसी पर नश्र होती हैं। बुध का प्रोग्राम SBS 2 पर शाम 6 बजे और जुमे का प्रोग्राम

0: अभी आप एक मकबूल गीत सुन रहे थे, और अब हम आपको एक वक्फे की तरफ लिए चल रहे हैं, और वक्फे से जब वापस आएंगे तो आपको हम सुनवाएंगे पाकिस्तान रिपोर्ट, और उसमें जिक्र रहेगा बाइक सवार ख्वातीन का। और इसके अलावा हम आपको ये भी याद दिला दें कि SBS उर्दू की नशरियात आप सिर्फ रेडियो पर ही नहीं बल्कि अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। जी हाँ, हमारी मोबाइल ऐप SBS ऑडियो के नाम से मौजूद है, जिसे आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड और एप्पल डिवाइसेस के लिए। और इसकी तफसीलात जानने के लिए sbs.com.au/audio पर जाइए। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो कुछ चलते चलते आपके लिए गीत और संगीत का एहतमाम भी मौजूद रहेगा।
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: सुनिए मुनफरिद कहानियाँ किसी भी मोबाइल डिवाइस से। मुफ्त विजिट कीजिए sbs.com.au/urdu या अभी डाउनलोड करें SBS ऑडियो ऐप। SBS ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड कीजिए और अपने पसंदीदा तमाम प्रोग्राम सुनिए। गूगल प्ले या एप स्टोर से SBS ऑडियो ऐप मुफ्त हासिल करें।
0: SBS उर्दू में एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूं, और अब वक्त आ गया है आपको पाकिस्तान लिए चलने का। बड़ी दिलचस्प स्टोरीज़ वहां से हमें अक्सर मौसूल होती हैं, और ऐसी ही कहानियों में इस वक्त आपको लिए चल रहे हैं एक कहानी की तरफ कि अगर ख्वातीन बाइक चलाना सीखें तो कहा जाता है किसी के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं रहती, वो कहीं भी किसी भी वक्त आने जाने के लिए ख़ुद मुख्तार हो जाती हैं। और इसी ख़ुद मुख्तारी का इजहार आजकल पाकिस्तान के कई शहरों की शाहराहों पर देखने में आता है, जहाँ बाइक लड़कियां मोटरसाइकिल चलाती नजर आती हैं। तफसील सुनते हैं पाकिस्तान से एहसान खान की इस रिपोर्ट में।
6: कि पाकिस्तान के बड़े शहरों की सड़कों पर अब मर्दों के साथ साथ खवातीन भी इंतहाई एहतमाद के साथ बाइक चलाती दिखाई देती हैं। कुछ अरसा पहले तक खवातीन का बाइक चलाना एक गैर मामूली और हैरान कुन अमल समझा जाता था, मगर आज ये मंजर रफ्ता रफ्ता मामूल बनता जा रहा है। बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी, गैर मुनज्जम सफरी निजाम और महंगी टैक्सी और रिक्शा सर्विसेज ने खवातीन के लिए दफातर, तालीमी इदारों और रोज़मर्रा के कामों तक रसाई को एक मुश्किल मरहला बना रखा था। लेकिन अब वही खवातीन बाइक चलाना सीख कर न सिर्फ अपनी नकलो हरकत में खुद मुख्तार हो गई है, बल्कि वक्त और पैसे दोनों की बचत भी कर रही है। ये तब्दीली अगरचे नुमाया नजर आती है, मगर इसके पीछे चंद खवातीन की बरसों भर मुहित मेहनत शामिल है, जिन्होंने न सिर्फ सैकड़ों लड़कियों को बाइक चलाना सिखाया बल्कि मुआशरे में खवातीन की खुद मुख्तारी से मुतालिक एक नई सोच को भी जन्म दिया। ज़ैनब सफ्तर गुज़िश्ता 9 बरसों से खवातीन को बाइक चलाना सिखा रही है। उन्होंने 2017 में अपने इदारे राउडी राइडर्स की बुनियाद रखी। SBS उर्दू से खुसूसी गुफ्तगु करते हुए उन्होंने कहा कि पहले मैंने खुद बाइक चलाना सीखी, जिसके बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर इससे हमारी जिंदगी आसान हुई है तो क्यों ना दीगर खवातीन को भी बाइक चलाना सिखाया जाए। और आज तकरीबन 2500 से ज्यादा खवातीन को बाइक राइडिंग सिखा चुकी है।
7: इसका इनका 2017 में हुआ, और उस वक्त जो है ज्यादा फीमेल्स बाइक राइडिंग नहीं करती थी, तो बहुत मुश्किल होती थी मुझे अपने घर से स्कूल में बच्चों को ड्रॉप करने के लिए, कभी मीटिंग के लिए आना जाना। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम राइडिंग सीखे। पहले मैंने और मेरी दोस्त राइडिंग सीखी, और उसके बाद जब हमने आपस में सीख ली तो हमने सोचा कि आप दूसरों को भी सिखाना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी आसान हो गई तो दूसरों की भी आसान होनी चाहिए। इसी तरह हमने स्टार्ट किया। और अब तक हम लोग ऑलमोस्ट 2500 लड़कियों को सिखा चुके हैं।
6: वो बताती है कि मुझे घर से कुछ मुखालफत का भी सामना रहा, तहम उसके बावजूद ये इकदाम उठाया।
7: जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हुई थी, ऑब्वियसली घर से भी मुझे परमिशन नहीं थी, जबकि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे, लेकिन उसके अलावा मेरे दूसरे जो रिलेटिव है उन्होंने बहुत ऑब्जेक्शन उठाए, लेकिन मुझे चाहा कि बाइक राइडिंग सीखनी है और सीखी मैंने।
6: ज़ैनब सफ्तर ने याद करते हुए बताया कि साल 2015 में जब बाइक राइडिंग सिखाने का आगाज किया था तो उस वक्त खवातीन के बाइक चलाने का रुझान नहीं था, तहम अब सूरतेहाल मुख्तलिफ है और हमारी ही लड़कियां अब मुख्तलिफ जगहों पर दीगर लड़कियों को सिखाने का काम जारी रखे हुए हैं।
7: जी बिल्कुल, जैसे राउडी राइडर ने 2017 में अपना इंस्टीट्यूट का मैंने आगाज किया था, उस वक्त जो है इतना ज्यादा रुझान नहीं था लड़कियों को बाइक राइडिंग सीखने का, लेकिन अब जबकि माशाल्लाह से बहुत सारे राइडर्स और बहुत सारी फीमेल इंस्टीट्यूट राउडी राइडर के अम्ब्रेला में ही सारे कर रहे थे, और अब तो ऐसा हो गया है कि हमारे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने अपने विसिनिटीज में अपने अपने एरियाज में इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो ये अब जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लड़कियां जो है आगे बढ़ रही हैं, आगे आ रही हैं, सीख रही हैं और सिखा रही हैं, तो यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे जो है बड़ा जो है हमारा गोल है।
6: राउडी राइडर से ही बाइक राइडिंग सीखने वाली ईशा सलीम कहती हैं, इब्तिदा में मुआशरे का बहुत ज्यादा दबाव था जिसकी वजह से छुपकर बाइक चलाना सीखी।
8: मुझे 4 साल लगे, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी, मेरी फैमिली से मुझे सपोर्ट कम था, मेरी मदर जरूर चाहती थी कि मैं बाइक चला सकूं और मैं सीख सकूं और सब कुछ, और मेरे फादर भी चाहते थे, बट मसला ये था कि हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ लोगों जो है वो लोगों का जीना दुश्वार कर देते हैं ना, तो उनको बड़ी टेंशन थी, बच्ची को मेरी सब कहेंगे, मेरी बेटी के लिए सब गलत बातें करेंगे कि ये बाइक चलाती है, तो इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम था, मेरी यहाँ बड़े मुश्किल था कि मेरे भाई वगैरह बुरा मान जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें फेस करी और बहुत छुप कर घर वालों को ना बताकर सिर्फ पेरेंट्स के इल्म में लाकर मैंने बाइक सीखी।
6: वो कहती हैं, जब हम इब्तिदा में अपनी बाइक्स रोड पर निकालती थी तो लोग हमें देखकर कहते थे कि ये कयामत के मनाजिर हैं, साथ ही तरह तरह के जुमले भी कसे जाते थे, तहम अब कोई मुश्किल दरपेश नहीं रही, रोजमर्रा के मामूलात की अंजाम दही में भी आसानी हो गई है।
8: मेरा एरिया जो है बहुत कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत बुरी नजरों से हमें देखते हैं और चलाने में बाइक बहुत दिक्कत होती थी, बाज हजरात तो ऐसे भी कहते हुए शुरू में करते थे और हम डर जाते थे कि कयामत आ गई है, फॉर एग्जांपल किसी जेंट्स का ऐसे अचानक से कह देना अस्तग़फिरुल्लाह, तो वो दिल जो है वो उस वक्त बैठ जाता है, डर लगने लगता है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, जैसे कि हम कुकिंग करती हैं घरों में, खाना बनाती हैं घरों में, हम और भी काम करती हैं डेली बेसिस पर, इसी तरीके से हम राइड करती हैं, तो यकीन जानिए हमारी जिंदगी में बहुत आसानी आ जाती है।
6: ईशा सलीम याद करते हुए कहती हैं कि पहली मरतबा बाइक चलाते हुए बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन अब कोई डर नहीं रहा, न लोगों का और न ही रश का, साथ ही रिक्शा और टैक्सी वालों से किराए पर बहस करने की जरूरत भी नहीं रही।
8: बिल्कुल बिल्कुल, डर तो बहुत लगता है जब हम फर्स्ट टाइम राइड करते हैं, तो मुझे याद है मैंने अपने घर से जो पहला सफर करा और मैं बहुत दिक्कत और मुश्किल के साथ अपने ग्राउंड में पहुंची, तो जब मैं वहां पहुंची हूँ तो मैं ठंडी थी बिल्कुल, पसीने से शराबोर थी और बिल्कुल साइड साइड चलाते हुए पहुंची, फिर वही बात है कि जब हम डेली बेसिस पर अपने काम करने लगते हैं तो फिर ये है कि आसानी हो जाती है हर चीज में, हर चीज को फेस करने की भी हिम्मत आ जाती है।
6: वो दीगर खवातीन को मशवरा देते हुए कहती हैं, अगर खवातीन बाइक चलाना सीख जाएं तो उन्हें किसी के इंतजार की जरूरत नहीं रहती, वो कहीं भी किसी भी वक्त आने जाने में खुद मुख्तार हो जाती है,
8: और यकीन यानी जिंदगी में बहुत सहूलत आ जाती है आपकी सोच से कहीं ज्यादा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरी जिंदगी में सहूलतें बिल्कुल मयसर नहीं थी, बैठे रहना पड़ता था कि भाई आएंगे, बाबा आएंगे, कोई आएंगे तो हम उनके साथ जाएंगे, मतलब हमें बस कमिट होता है तो हम वेट कर रहे होते हैं, हम उस वेट वाली झंझट से निकल जाते हैं, और आसानी जो हमारी लाइफ में अगर आप कहेंगे तो हमारा काम अपने आसानी तरीके से कर लेते हैं, यकीन जाने बहुत आसानी आ जाती है जिंदगी में।
6: ईशा सलीम ने दीगर वालदैन को मशवरा देते हुए कहा कि उन्हें अपनी बेटियों को बाइक चलाने की इजाजत दे चाहिए, बाइक राइडिंग करना कोई बुरी बात नहीं। ईशा सलीम के मुताबिक नौजवान खवातीन को बाइक चलाने की इजाजत देना उनका बुनियादी हक है जिससे उन्हें कोई महरूम नहीं कर सकता। SBS उर्दू के लिए रिपोर्ट पाकिस्तान से एहसान खान ने पेश की।
0: और हम आपके लिए पाकिस्तान से न सिर्फ सोशल रिपोर्ट्स बल्कि सियासी मद्दोजहद पर मबनी रिपोर्ट्स भी लेकर आते हैं। तो ये हर फोर्टनाइटली यानी 15 रोज़ में एक बार हम आपके लिए कहानियाँ लेकर आते हैं और तबसरे लेकर आते हैं। अगर आप पाकिस्तानी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो आप हमारे करंट अफेयर के पेज पर जा सकते हैं, sbsurdu.sbsurdu के वेब पेज पर जाइए और उसमें आपको बहुत से ऐसे पॉडकास्ट सीरीज़ और सेक्शंस मिलेंगे अलग अलग, जिनमें आप पाकिस्तान से रिलेटेड ख़बरें भी देख पाएंगे। और अपने देश की खबरें में का सेक्शन मौजूद है हमारे वेब पेज के ऊपर, और हमारा वेब पेज बाइलिंगुअल है यानी उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में मौजूद है। तो अंग्रेज़ी में उन लोगों के लिए जो उर्दू पढ़ नहीं सकते मगर समझ सकते हैं। इसके अलावा हमारा SBS स्पाइस चैनल भी मौजूद है, SBS साउथ एशियन चैनल भी मौजूद है। ये अंग्रेज़ी में चैनल हैं साउथ एशियन कम्युनिटीज़ के लिए, उनकी मालूमात बढ़ाने के लिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। आप हमारे पेजेस को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप instagram.com/sbsurdu पर जाइए, facebook.com/sbsurdu पर जाइए और sbssouthasian/urdu पर जाइए, हमारा YouTube चैनल है। अब यहीं पर मुझे इजाज़त दीजिए। जी हाँ, मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और अपने आज के मेज़बान रेहान अलवी को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ। फिर मिलेंगे, खुदा लाया। और आप सुनिए ये मारूफ कलाम जो इब्ने इंशा का है और इसे हमारे वक्त के मारूफ गज़ल खान ने गाया है, आपकी समातों की नज़र है। और मुझे यहीं पर इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।

0: शुरू हो चुके हैं जी। इस दे विच तुसी तुहानू सुनांदे हुंदे आ बॉलीवुड गपशप हर बुधवार वाले दिन। जे तुसी किसी कारण साडा प्रोग्राम जो लाइव हैगा उसनू मिस कर जांदे हो तो याद रखियो कि इसे प्रोग्राम का रिपीट रात को 9 to 10 PM SBS 2 के उत्ते हुंदा है। वो जरूर सुनिया करो तो अपने विचार साढ़े तक पहुँचते करते रहो। जो साडा SBS का पेज है, वैब पेज है, उत्थे समय समय से असी पॉडकास्ट पाते रहने, उन्होंने जाके देखते रहा करो sbs.com.au/punjabi। तो साडा जिहड़ा पेज है वह बहुत बाईलिंगुअल है, पंजाबी भी हैगा तो इंग्लिश दे विच भी हैगा, तो कुछ स्टोरीज असी इंग्लिश विच भी पाते रहने, पब्लिश करते रहते हुंदे आ। लो सुनते हैं जी बॉलीवुड गपशप, तो जो समा मिले उस तो बाद गीत भी सुनावांगे।
1: SBS रेडियो पंजाबी दे प्रोग्राम बॉलीवुड गपशप विच तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर, खबरां दी शुरुआत करदे हां। एक्ट्रेस शर्वरी वाघ अपनी अपकमिंग फिल्म नू लेके काफी एक्साइटेड ने। शर्वरी ने दस्या कि उन्हां ने किरदार नू बेहतर तरीके दे नाल समझण दे लई अपने मां दे नाल पंजाब दी यात्रा कीती सी। उन्हां नू पंजाब दा कल्चर अते उत्थों दे लोक काफी पसंद आए। शर्वरी ने कहा, मेरा बैकग्राउंड महाराष्ट्रियन है, पंजाब दा कल्चर, उत्थों दे लोक अते खाने नू समझण दे लई मैं उत्थे जाना चाहुंदी सी। इम्तियाज अली पंजाब दे बारे विच इन्ना प्यार नाल दस रहे ने तां मैनू लग्या कि मैं आप उत्थे जाके सब कुछ महसूस करा, उत्थों दे बारे विच मैनू समझना चाहिदा है। शर्वरी ने पंजाब दे लोकां दी खूब शलाघा कीती। उन्हां ने कहा, मैं उत्थे सब कुछ बिना किसी रिसर्च प्रेशर दे कीता अते सच विच मैनू पंजाब नाल प्यार हो गया। मैनू लगदा है कि पंजाब दे लोक दुनिया दे सब तो चंगे लोकां विच शामिल ने। फिल्म मैं वापस आऊंगा विच शर्वरी एक पंजाबी महिला दा किरदार निभा रही है। फिल्म विच उन्हां दे नाल वेदांग रैना भी अहम किरदार विच ने। मैं वापस आऊंगा फिल्म 12 जून नू सिनेमा घरां विच रिलीज होने वाली है। पंजाबी सिंगर जैस्मिन सैंडल्स दे देहरादून लाइव कॉन्सर्ट विच अचानक अफरा तफरी दा माहौल बन गया। जैस्मिन सैंडल्स स्टेज ते परफॉर्म कर रही सी ता अचानक दर्शकां दे बिल्कुल सामने वाले हिस्से दा बैरिकेड टूट गया। घटना तो बाद सिंगर ने तुरंत अपने परफॉर्मेंस रोक दिती अते अपनी पर्सनल टीम नू सुरक्षा दी जिम्मेदारी संभालन नू कहा। जैस्मिन ने स्टेज ते माइक देखा, मैनू बहुत दुख है कि अजिहा हो रहा है, मैं चाहती हां कि मेरी पूरी टीम छेती आके इस मामले नू सुलझाए। इस दे बाद सिंगर स्टेज ते वाहेगुरु दा नाम लेंदी हुई भी सुनाई दिती। जैस्मिन दी टीम ने तुरंत दखल दे के स्थिति नू कंट्रोल किया, जिस तो बाद हालात नॉर्मल हो गए। पंजाब विच एक बार फिर अगवा अते कतल दा मामला सामने आया है। पंजाबी गायिका इंदर कौर, जिन्हां नू यशिंदर कौर दे नां नाल भी जाणिया जांदा है, बीते दिनी सिंगर दी लाश लुधियाना दे नीलो शहर विच मिली। पुलिस अते उन्हां दे परिवार मुताबक 6 दिन पहला कथित तौर ते बंदूक दी नोक ते इंदर कौर नू अगवा कर लिया गया सी। ओह शाम नू ग्रोसरी खरीदण दे लई अपनी फोर्ड फिगो कार तो घर निकली सी, लेकिन वापस नहीं परती। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री अते सोशल मीडिया दा मन्ना परमन्ना चेहरा इंदर कौर दा जन्म साल 1997 विच होया सी। इंदर कौर मूल रूप दे नाल पंजाब दे लुधियाना शहर दी रहण वाली सी। इंदर कौर ने पिछले कुछ सालां विच पंजाबी संगीत जगत विच अपनी वखरी थां बनाई सी। उन्हां वल्लों रिलीज़ कीते गए गाणियां विच अफगान जट्टी, सोना लगदा, लानेदारनी, देसी सिरे दे, सोने दिवांग, किसान एंथम, जीजा, रिच स्टैंडर्ड, आकड़ अते कदों ता मिलेगी शामिल है। बॉलीवुड स्टार रिचा चड्ढा अते अली फाजल छेती ही न्यूजीलैंड विच बॉलीवुड दा रंग विखेरते नजर आउणगे। दोवे 2 जून 2026 नू मुल्क दे पहले इंडियन फिल्म फेस्टिवल द इंडियन फिल्म फेस्टिवल आफ न्यूजीलैंड दे अधिकारिक लॉन्च विच शामिल होणगे। ए एक्टर डायरेक्टर जोड़ी इस लॉन्च इवेंट दी मुख आकर्षण होएगी। इस मौके ते उन्हां दी बतौर प्रोड्यूसर पहली फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स दी खास स्क्रीनिंग भी रखी जाएगी। इस फिल्म नू दुनिया भर दे वड्डे फिल्म फेस्टिवल जिवे सनडांस अते इंडिपेंडेंट स्पिरिट्स अवार्ड विच काफी सराहना मिल चुकी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी दी फिल्म मैं एक्टर नहीं हूँ इस साल दी सब तो वड्डी सरप्राइज इंडी हिट फिल्मा विच शामिल हो गई है। सिर्फ 1.5 करोड़ दे छोटे बजट विच बनी इस फिल्म ने रिलीज दे 14 दिनां दे अंदर 4.25 करोड़ दी शानदार कमाई कर ली है। सब तो खास गल ए है कि मैं एक्टर नहीं हूँ ने बिना किसी वड्डे कमर्शियल सपोर्ट जा फ्रेंचाइजी दे एक कामयाबी हासिल कीती है। इस कामयाबी दे केंद्र विच ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिन्हां दी एक्टिंग फिल्म दी सब तो वड्डी ताकत बन के सामने आई है। हर किरदार विच पूरी तरह ढल जान दी उन्हां दी कला एक बार फिर लोकां नू बेहद पसंद आई है। हेरा फेरी 3 दे ऐलान दे बाद तो ही फिल्म लगातार सुर्खियां विच बनी हुई है, लेकिन ज्यादातर गलत वजहां दे नाल। खबरां दे मुताबिक परेश रावल ने एक बार फिर इस प्रोजेक्ट तो दूरी बना ली है। रिपोर्ट के मुताबिक परेश रावल ने फिल्म का साइनिंग अमाउंट 15% ब्याज अते अतिरिक्त मुआवजे दे नाल वापस कर दिता है। रिपोर्ट विच एक सूत्र के हवाले नाल दसिया गया है कि परेश रावल की कुल फीस 15 करोड़ रुपए तय हुई सी। टर्म शीट विच ए लिखा गया सी कि उन्हां नूं बाकी दे पैसे 14.89 करोड़ रुपए फिल्म रिलीज होने के 1 महीने बाद दी जाएगी। इस शर्त नूं लेके परेश रावल की मंजूरी नहीं सी। फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू होने वाली है। अजे विच हेरा फेरी 3 2026 दी आखिर या फिर 2027 दे पहले रिलीज होने की संभावना घट है। यानी परेश रावल नूं अपनी बाकी फीस पाउण दे लई करीब 2 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। हिंदी सिनेमा की मशहूर जोड़ी माधुरी दीक्षित अते अनिल कपूर ने 80 अते 90 दे दहाके विच कई सुपरहिट फिल्मां विच इकट्ठिया काम किया है अते अपनी शानदार केमिस्ट्री दे नाल दर्शकां दा दिल जीतिया है। हुण एक बार फिर इस जोड़ी नूं लैके चर्चा तेज हो गई है। दरअसल निर्देशक सुरेश त्रिवेणी ने दस्या है कि आने वाले समय विच माधुरी अते अनिल कपूर एक बार फिर एक प्रोजेक्ट विच इकट्ठे नजर आ सकते ने। उन्होंने कहा, मैं दोनों नूं मुड़ तो इकट्ठिया पर्दे ते लियाना चाहुंदा हां। जेकर मैनूं मौका मिलिया तां मैं जरूर दोनों नूं इकट्ठिया लैके कुछ नवा बनाउण दी कोशिश करांगा। सौरभ गांगुली दे जीवन ते आधारित फिल्म दादा द सौरभ गांगुली स्टोरी दी शूटिंग मुंबई भी शुरू हो चुकी है। ए फिल्म सौरभ दे पर्सनल अते प्रोफेशनल जीवन नूं प्रदर्शित करेगी। सौरभ दे पिता चंडीदास गांगुली दा किरदार एक्टर सास्वता चटर्जी निभाउणगे। सास्वता चटर्जी ने फिल्म दी शूटिंग भी शुरू कर दित्ती है। उन्हां दे नाल क्रिकेटर दी मां निरूपा दा किरदार निभा रही है अपराजिता ऑडी अते उन्हां दे भरा स्नेहाशीष दा किरदार निभा रहे ने राहुल देव बोस। फिल्म दे आधिकारिक टाइटल दा ऐलान हाले तक नहीं होया है। बॉलीवुड गपशप विच अज इन्ना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होवांगे और बॉलीवुड दी ताजा खबरां लेके। तद तक लई इजाजत।

दोस्तों तुसी सुनिया एक खूबसूरत गीत हरभजन मान की आवाज़ दे विच। ते हरभजन मान इश्क नू खूबसूरत कहिंदे एक रोग हैगा, अवला रोग हैगा, ते किसी नू लाना नहीं चाहिदा, इस तो बच के रहना चाहिदा। तुसी इहदे नाल किन्ना कु सहमत हैगे हो जरूर सांझ पायो punjabi.program@sbs.com.au ते ईमेल करदे होए। आज दा प्रोग्राम समेटन दी मैनू दिओ इजाजत, जल्द मिलांगे एक नवे प्रोग्राम दे विच। अपना बहुत सारा ध्यान रखियो, सुनते रहो SBS पंजाबी।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: नमस्कार दोस्तों, SBS हिंदी के कार्यक्रम पर 27 मई 2026 की शाम और घड़ी में 5 बजते ही समय हो चला है खबरों की ओर रुख करने का. उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए होंगे. आज के शो की शुरुआत हो इससे पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंजुरी और वुईवुरिंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद कर रहे हैं जिनकी भूमि पर आज का कार्यक्रम सुना जाएगा. नमस्कार ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर के हमें सुन रहे सभी श्रोताओं को SBS हिंदी का नमस्कार. मैं हूं भव्या पांडे और अगले एक घंटे तक आपका साथ निभाने वाले हैं खबरें, बातचीत, जानकारी और शानदार गाने. आज के शो में हम बात करेंगे टैक्स रिटर्न में डिडक्शंस और क्लेम्स की. जानेंगे मेलबर्न के में जो चर्चित हुक टर्न है वो आखिर क्या होता है और बताएंगे न्यू साउथ वेल्स में शुरू हुए पहले माइग्रेंट वर्कर्स सेंटर के बारे में भी. लेकिन इन सभी खास चर्चाओं से पहले आपको आज का सवाल बता देती हूँ. आजकल मैं आपको गाने की एक बहुत ही बढ़िया सी धुन सुनाती हूँ और उसके बाद आप मुझे बताते हैं कि ये आखिर कौन सा गाना है. कुछ बीते दिनों में मैंने देखा है कि आप सभी को ये जो छोटा सा कॉन्टेस्ट है वो बहुत ही पसंद आता है, तो आज मैं आपके लिए नया गाना लेकर आ गई हूँ. सुनिए इसे ध्यान से और बताएं मुझे 04397997677 पर सही जवाब.

0: तो यदि आपने ये गाना पहचान लिया है तो सही जवाब भेज दें मुझे 04397997667 पर। तो टैक्स रिटर्न भरते समय आखिर किन खर्चों पर क्लेम किया जा सकता है, क्या वर्क फ्रॉम होम एक्सपेंस वाकई डिडक्शन में आता है, इन सभी सवालों के जवाब आज हम SBS हिंदी की नई श्रृंखला जो कि स्वाति शर्मा आप तक लेकर आई हैं, जिसे हम कहते हैं मनी मैटर्स, के दूसरे अंश में यानी दूसरे एपिसोड में आप तक लेकर आएंगे। इसके अलावा आखिर हुक टर्न क्या होता है, इसे लेकर इतनी घबराहट आखिर ड्राइवर्स को क्यों होती है और इससे बचने का सही तरीका क्या है, इस पर बातचीत करेंगे एक खास ड्राइविंग एक्सपर्ट के साथ। इसके अलावा एक खास अंश भी होगा जिसमें हम बात करेंगे सॉरी डे के ऊपर। अब ये सॉरी डे क्या होता है और इसका एबोरिजिनल्स के साथ क्या संबंध है, ये भी आपको जल्द बताऊंगी। इसके अलावा भारत से समाचार तो होंगे ही, और एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि आज के कार्यक्रम के जितने भी संदेश और सुझाव हैं वो आप मुझ तक 04397997667 पर भेज सकते हैं। साथ ही एक खास गिव अवे कॉन्टेस्ट के बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। प्रस्तुत है 27 मई 2026 का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ। वेलफेयर पेमेंट्स पाने वाले लोगों के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार एक नई एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज सिस्टम लाने जा रही है। कार्यस्थल मंत्री अमांडा रिश्वत आज नेशनल प्रेस क्लब में अपने संबोधन के दौरान इन बड़े बदलावों की घोषणा करेंगी। नई व्यवस्था के तहत जॉब सीकर्स को 3 अलग अलग स्तरों में सहायता दी जाएगी और वन साइज फिट्स ऑल नीति को खत्म किया जाएगा। ऐसे में सरकार का कहना है कि पिछले 30 सालों में एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है वेस्ट पैक की ओर से। वेस्ट पैक पर $26 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है। अब ऐसा क्यों हुआ? दरअसल फेडरल कोर्ट ने पाया है कि बैंक ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे ग्राहकों की मदद के अनुरोधों पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं की थी। करीब 6 वर्षों में बैंक को 200 हार्डशिप रिक्वेस्ट मिली थी, जिनमें होम लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और निजी लोन से जूझ रहे ग्राहक शामिल थे। ऐसे में ASIC की डेप्यूटी चेयरवुमन सारा कोर्ट ने कहा है कि ये फैसला सभी लेंडर्स के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि फाइनेंशियल हार्डशिप यानी आर्थिक तंगी झेल रहे ग्राहकों की सहायता बेहतर तरीके से की जानी चाहिए। आइए अब चलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी खबर की ओर। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस और काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स ने कहा है कि IS समूह से जुड़े ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं और बच्चों के एक समूह की जांच जारी रहेगी, जिन्हें हाल ही में सिडनी और मेलबर्न वापस लाया गया है। बताया जा रहा है कि ये ग्रुप सीरिया के अल रोस कैंप में मौजूद आखिरी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक थे। वहीं नेशनल एंटी करप्शन कमीशन को ये जांच करने के लिए रेफरल मिला है कि विक्टोरिया क्रॉस रेसिपिएंट बेन रॉबर्ट स्मिथ की गिरफ्तारी की जानकारी मीडिया तक पहले कैसे पहुंची। ऑफिसर ऑफ द स्पेशल इन्वेस्टिगेटर और ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने संयुक्त रूप से ये रेफरल भेजा है। आइए बढ़ते हैं स्वास्थ्य की ओर। न्यू साउथ वेल्स में फ्री नेजल स्प्रे फ्लू वैक्सीन की एलिजिबिलिटी बढ़ा दी गई है। अब 2 से 17 वर्ष के सभी बच्चे और किशोर कम्युनिटी फार्मेसीज और GPs के जरिए ये वैक्सीन लगवा सकेंगे। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री रियान पाक का कहना है कि रिकॉर्ड स्तर के फ्लू सीजन को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। वहीं बात करें खेल जगत की तो जॉश इंग्लिस पाकिस्तान के खिलाफ आगामी वन डे इंटरनेशनल सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करेंगे। मिच मार्श IPL के दौरान पैर में लगी चोट के कारण टीम से बाहर हो गए हैं। वहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक बयान में बताया है कि मार्श का आगे का इलाज और निरीक्षण पर्थ में किया जाएगा। बात करें भारत की तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाले हैं। विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा है कि ये दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने का एक अवसर होगा। वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने भी पुष्टि की है कि इस यात्रा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इसी के साथ आज का न्यूज फ्लैश यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। तो दोस्तों ये आपने सुना आज का न्यूज फ्लैश। स्टोलन जनरेशंस पर ऐतिहासिक ब्रिजिंग थीम होम रिपोर्ट अब सामने आ ब्रिजिंग डैम रिपोर्ट सामने आई है और इसको 3 दशक बीत चुके हैं लेकिन सरकार ने अब तक उसकी केवल 6% सिफारिशों को ही लागू किया है। इस साल 26 मई को नेशनल सॉरी डे पर समर्थकों ने सरकार से अपील की कि बचे हुए लोगों और उनके परिवारों को बेहतर सहयोग देने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाए। आइए सुनते हैं ये खास रिपोर्ट जो कि आप तक लेकर आ रही हैं स्वाति शर्मा।
1: नमस्कार, SBS हिंदी पर मैं हूँ स्वाति शर्मा। 1997 में स्टोलन जेनरेशन पर ऐतिहासिक ब्रिंगिंग देम होम रिपोर्ट पेश की गई थी। लगभग 3 दशक बाद भी उसकी 83 सिफारिशों में से केवल 6% ही लागू की गई हैं। 26 मई को नेशनल सॉरी डे मनाया जाता है ताकि 1910 से 1970 के बीच अपने परिवारों से जबरन अलग किए गए इंडिजिनस बच्चों को याद किया जा सके और सम्मान दिया जा सके। यबरू महिला शैनन डॉटसन हीलिंग फाउंडेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।
2: इट इज द वन डे ईच ईयर व्हेन दिस नेशन इज आस्क्ड अगेन टू फेस अ सिंपल डेविस्टेटिंग ट्रुथ दैट गवर्नमेंट्स इन दिस कंट्री टुक आवर बेबीज एंड आवर चिल्ड्रन फ्रॉम देयर फैमिलीज देयर कम्युनिटीज देयर कल्चर एंड देयर कंट्री दैट दे डिड दिस ओवर जनरेशंस and that they did this on purpose. This is not history. The people who lived through these policies are our aunties, our uncles, our parents, our grandparents, our cousins. They are sitting beside you.
1: उनका कहना है कि इतने वर्षों बाद भी निष्क्रियता का कोई बहाना नहीं हो सकता।
2: 29 years ago, the Bring Them Home report carried those truths into Parliament. Survivors sat in front of strangers and did one of the hardest things a person can do. They reopened their deepest wounds, often for the first time, believing that by putting their pain on the public record, this country would change. The report that followed made 83 recommendations. It was not just a list, it was a roadmap for healing, for justice, for reparations, a set of concrete steps to say this is how we begin to make this right.
1: 2008 में उस समय के प्रधानमंत्री केविन रड ने स्टोलन जेनरेशन से औपचारिक माफी मांगी थी।
3: As Prime Minister of Australia, I am sorry. On behalf of the government of Australia, I am sorry. On behalf of the Parliament of Australia, I am sorry. And I offer you this apology without qualification.
1: लेकिन रिपोर्ट की 30वीं वर्षगांठ और केवल 5 सिफारिशों के लागू होने के बीच समर्थकों का कहना है कि केवल माफी मांगना पर्याप्त नहीं है। इस नेशनल सॉरी डे पर हीलिंग फाउंडेशन ने फेडरल सरकार को 2 साल की कार्य योजना सौंपी जिसमें नेताओं से अपनी माफी पर अमल करने की अपील की गई है। शैनन डॉटसन का कहना है कि यह योजना सरकार के लिए पुनर्स्थापन और न्याय को आगे बढ़ाने का एक व्यावहारिक माध्यम है।
4: Sadly, what we've seen with not seeing this implementation over 30 years, an entire generation, is that we've seen another generation of trauma being passed down. And some of the things that we see in our communities is a symptom of that trauma. And we really need to address this from a systematic and holistic approach. And that is what the research has shown, is that there hasn't been that approach.
1: विभिन्न राज्य और क्षेत्रीय योजनाओं के तहत स्टोलन जेनरेशन के बचे हुए लोगों को एक मुश्त $1,00,000 तक के वित्तीय भुगतान दिए गए हैं। हालांकि क्वींसलैंड अब भी ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र राज्य है जहां कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। इस नेशनल सॉरी डे पर फेडरल सरकार ने स्टोलन जेनरेशन के बचे हुए लोगों के समर्थन के लिए अतिरिक्त $2.6 million की फंडिंग की घोषणा की है। लेकिन गुन्नाई गुंदित जमारा और जाब वुरुंग महिला तथा सेनेटर लिडिया थॉर्प का कहना है कि न्याय केवल फंडिंग तक सीमित नहीं है।
5: Sorry means you don't do it again. But what do you know, we have 24,000 Aboriginal and Torres Strait Islander children in out of home care in 2026. It is still happening. It is still real and babies are still being ripped out of their mothers' arms.
1: हीलिंग फाउंडेशन का कहना है कि स्टोलन जेनरेशन के बचे हुए लोगों में ज्यादातर खराब स्वास्थ्य वाले बुजुर्ग ऑस्ट्रेलियाई लोग और कम आय वाले समूह हैं। डॉटसन का कहना है कि कई बचे हुए लोग अब वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं, इसलिए सिफारिशों पर कार्रवाई अब समय की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो गई है।
4: Most survivors are now eligible for aged care, and we still need to see a better trauma-informed and culturally safe approach for survivors, particularly, for example, ensuring that they have fully subsidised co-payments so that they're not having to be out of pocket for costs to support them as they age with dignity at home.
1: नॉर्दर्न टेरिटरी की लिंगियारी सीट से फेडरल सांसद मैरियन स्क्रिमगोर हैं। उनके पिता को बचपन में सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया से जबरन अलग कर दिया गया था। उनका कहना है कि स्टोलन जेनरेशन के सभी लोगों को अतिरिक्त सहयोग मिलना चाहिए ताकि वृद्ध देखभाल की प्रक्रिया उनके लिए और अधिक आघात का कारण ना बने।
6: It is also proposed that there be a Stolen Generations Access and Prioritisation Card and a formal escalation pathway for survivors, aged care complaints, delays and inquiries, and that Stolen Generation organisations be provided with additional dedicated funding over 4 years to assist our remaining survivors in navigating their respective aged care journeys.
1: शैनन डॉटसन का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि अगले साल तक वास्तविक प्रगति देखने को मिलेगी।
2: Sorry signals compassion, but action creates justice. My hope is that when we gather again next year for the 30th anniversary, we will not just be marking another date. We will be able to point to real changes. To every survivor and family here today, we see you, we hear you. We carry your stories with us. Actions speak louder than words. It's time to move from sorry to action.
1: SBS News से सिडनी लैंग की इस रिपोर्ट को SBS हिंदी पर प्रस्तुत किया स्वाति शर्मा ने। धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर वक्त है हमारे पहले ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। लौटकर हम सुनेंगे खबरें भारत से। जुड़े रहें SBS हिंदी के साथ।
7: Starting a new life in Australia isn't easy.
8: A lot of companies have rejected me.
9: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
7: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
10: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
11: अच्छे शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। SBS Learn में शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित ऑनलाइन संसाधन मौजूद हैं। sbs.com.au/learn पर जाएं।
12: Hi, I'm Janice Peterson from SBS World News. And I'm here to help you improve your English pronunciation. This short lesson is only about 5 minutes. So you can easily fit it into your day, perhaps on your lunch break.
13: SBS Learn English helps Australians speak, understand and connect.
0: दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। तो आपको बता दूं कि वक्त हो चला है 5:16, और वैसे तो बुधवार को मैं आऊं और आप मेरे साथ ना जुड़े हों ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर आप आज के कार्यक्रम में किसी भी कारणवश ज़रा देरी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो आपको बता दूं कि हमारा कोई भी सेगमेंट या कार्यक्रम आप SBS हिंदी की जो वेबसाइट है यानी sbs.com.au/hindi पर जाकर सुन सकते हैं। इसके अलावा हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं, तो यदि आपने हमें अभी तक वहाँ पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, क्योंकि इन दो माध्यमों के माध्यम से हम आप तक जो खबरें हैं वो वीडियो के फॉर्मेट में एक अलग अंदाज में लेकर आते हैं। तो जल्दी से SBS हिंदी के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर जाएं और फॉलो कर लें। चलिए, ब्रेक से पहले हमने नज़र डाली थी आज की खबरों पर और साथ ही स्टोलन जनरेशंस पर आधारित एक रिपोर्ट पर
9: एक अंश हम आप तक लेकर आए थे जो कि उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। साथ ही आप सभी लोगों के खूब सारे संदेश आ रहे हैं जो कि जल्द पढ़ूंगी और एक बार फिर से आज का जो मेरा सवाल है वो दोहरा दूंगी, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं भारत की खबरों पर।
14: क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की मंगलवार को नई दिल्ली में बैठक हुई। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान वाले इस रणनीतिक समूह ने समुद्री सुरक्षा पर जोर दिया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और नेविगेशन की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए नए उपायों की घोषणा की गई है। महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर भी सहमति बनी है। समुद्री निगरानी को मजबूत करने के लिए IBMDA की शुरुआत की गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय में अधिकारी नागराज नायडू ने इस बारे में जानकारी दी।
15: The ministers underscored the importance of maritime security and resilient sea lanes in the Indo-Pacific. The Quad has expanded its cooperation under the IPMDA, which is the Indo-Pacific Maritime Partnership for Maritime Domain Awareness, including efforts towards a comprehensive common operational picture across the Indo-Pacific. The Quad today launched the Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration, the IPMSC. This is aimed to strengthen the coordination in maritime surveillance. IPMSC, with the integration of the latest technologies, will augment the IPMDA and enable sharing of real-time information and provide an enhanced picture of vessels. This effort will initially be focused on the Indian Ocean region.
14: इस निगरानी पहल को पूरी तरह शांतिपूर्ण बताते हुए नागराज नायडू ने कहा कि इसे सैन्यकरण की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए।
15: Surveillance should not be seen as militarization of the Quad. Neither is IPMDA, the Indo-Pacific Maritime Domain Awareness. The idea today is that the international waterways today are now getting clogged. At the same time, there are a lot of grey ships around. There are dark ships around. So countries, you know, in the Indo-Pacific sometimes do not have access to such technologies. So Quad partners have come together. Some of these technologies are very, very expensive. They are available commercially. So what Quad partners are doing together is to somehow buy this.
14: क्वाड बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग के बीच एक बैठक हुई। 17वें भारत ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्रियों के फ्रेमवर्क डायलॉग के तहत इस बैठक में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। दोनों नेताओं ने रक्षा, ऊर्जा और परमाणु सहयोग पर आपस में बात की है। व्यापार समझौते को बढ़ाने को लेकर भी सहमति बनी है। क्वाड बैठक के इतर भारत और अमेरिका के बीच भी द्विपक्षीय बैठक हुई। इसमें क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर एक समझौता हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बारे में बताते हैं।
16: We are today signing a bilateral India-US framework on securing of supply of mining and processing of critical minerals and rare earths. This is something which we have also discussed today at the Quad meeting. Whether we're doing it bilaterally, whether we're doing it as a quad format, or in fact as a larger gathering of like-minded nations, it is clearly something very timely, something very important, something very critical today.
14: इस अवसर पर अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर कहा।
17: Two countries who have a strategic interest in ensuring reliable long-term access to critical minerals and supply chains that are important for our innovation economy. And today is a tangible result of that. It's tangible evidence of why it is we are strategic allies.
14: सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार चतुष्कोणी सुरक्षा ग्रिड पर काम कर रही है। मंगलवार को राजस्थान के बीकानेर में BSF के एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में कहा।
18: हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमें जागरूक करना पड़ेगा और ये BSF, सेना और जागरूक नागरिक, ये तीनों मिलकर एक मजबूत सुरक्षा की ग्रिड बना सकते हैं और इसके साथ साथ यहाँ की सरकार का स्थानीय प्रशासन, इस प्रकार की एक चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड ही हमारे सुरक्षा कंप्लीट सुरक्षा ग्रिड की कल्पना को पूरी कर सकते हैं।
14: 2014 के बाद भारत की सुरक्षा नीति में आए बदलाव को लेकर अमित शाह कहते हैं,
18: 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के सुरक्षा परिदृश्य में आमूलचूर परिवर्तन आए हैं। सेना का आधुनिकीकरण हो रहा है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का भी हम बहुत अच्छे तरीके से एक प्रकार से कंप्लीट सुरक्षा सुनिश्चित हो उस तरह से आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं, और जहां जहां भी कुछ बड़े प्रयास आतंकवादियों द्वारा किए जाते हैं वहां रूथलेसली उनको मुंह तोड़ जवाब भी देने की नीति भारत सरकार ने अपनाई।
14: और अब चर्चा कर्नाटक की, जहां मुख्यमंत्री को बदले जाने की चर्चा जोरों पर है। यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मिलने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दिल्ली आए थे। इसके बाद से ही माना जा रहा है कि सिद्धारमैया की जगह डीके शिवकुमार को कमान सौंपी जा सकती है। वैसे कांग्रेस पार्टी ने इसे महज अटकल बताकर खारिज कर दिया है। बैठक के बारे में बताते हुए कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा,
19: टुडे एंटायर डिस्कशन इज ओनली कंसंट्रेटेड ऑन कमिंग राज्यसभा इलेक्शंस एंड काउंसिल इलेक्शंस ऑफ कर्नाटक। व्हाटएवर स्पेकुलेशन यू पीपल आर डूइंग दैट इज ओनली स्पेकुलेशन, नो रियलिटी एट ऑल। टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द राज्यसभा सीट्स एंड द काउंसिल सीट्स ऑफ कर्नाटक। The candidates of Rajya Sabha and council seats of Karnataka will be announced along with the other seats like Chhattisgarh, like Madhya Pradesh and Rajasthan and Jharkhand, like the states.
14: और अंत में चर्चा एक और दक्षिणी राज्य केरल की। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के घर पर इस समय प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर की जा रही है। हाल ही में सत्ता गंवाने वाले विजयन वामपंथी राजनीति के बड़े चेहरे हैं। तिरुवंतपुरम में विजयन के आवास सहित 12 जगहों पर छापेमारी की सूचना है। हालांकि इस छापेमारी को लेकर ईडी ने आधिकारिक रूप से अभी कोई जानकारी साझा नहीं की है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
9: तो दोस्तों, ये हमने सुने समाचार भारत से, और एक बार फिर से आज का सवाल दोहरा देती हूँ। तो अब मैं आपको एक धुन सुनाने वाली हूँ और आपको पहचानना है कि ये कौन सा गाना है। तो दोस्तों, नंबर है 04397997667। और चलिए, जो भी लोग हमारे साथ कार्यक्रम में अभी अभी जुड़े हैं, आपको बता दूं कि आज के कार्यक्रम में आपको एक धुन सुनाऊंगी और आपको इस गाने का नाम मुझे बताना है। एक बार फिर से आपके लिए चला देती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुनकर पता लगा लिया होगा, ये बहुत ही मशहूर गाना है और आज हम पुराने गाने चलाने वाले हैं। तो इसी के साथ, जब तक आप अपने जवाब मुझे 04397997667 पर भेज रहे हैं और हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उससे पहले आपको अपना मनपसंद पुराना गीत सुनाती हूँ।

तो दोस्तों, आप लोगों के संदेश मुझ तक आ रहे हैं और जल्द बताऊंगी कि किन किन लोगों ने आज के सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक दिया है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही प्यारा सा संदेश पढ़ देती हूँ। हर्षवर्धन जी सिडनी से लिखते हैं, हेलो SBS, होप यू ऑल आर वेल, प्लेजर एज ऑलवेज लिसनिंग टू यू एंड ऑलवेज अमेज्ड बाय द ब्रॉडकास्ट। ह्यूज थैंक्स टू यू फॉर योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन फॉर ब्रिंगिंग द बेस्ट टू द कम्युनिटी। साथ ही इन्होंने जो जवाब दिया है बिल्कुल सही है, लेकिन क्या जवाब है ये नहीं बताऊंगी। और आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रम को लेकर हमें फीडबैक देते हैं, अपना सुझाव या कोई भी टिप्पणी हम तक पहुंचाते हैं, तो हमें भी काम करने में बहुत प्रोत्साहित महसूस होता है।

तो एक और संदेश मुझे आया है, लिखते हैं अकबर मजारी और डैनियल मजारी जी, और आज के सवाल का सही जवाब उन्होंने देते हुए कहा है, लव दिस सॉन्ग एंड लव दिस शो फ्रॉम सिडनी। तो आजकल सिडनी वासियों के खूब मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, क्या बात है। मेलबर्न वासी जो हैं वो थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाएँ और 04397997667 पर मुझे बताएं कि आपको आज का कार्यक्रम कैसा लग रहा है। साथ ही आप दोनों को भी आपके मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप लोग सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम का उपयोग करते हैं तो आजकल नई जनरेशन जेंजीज में ये नया ट्रेंड चला हुआ है कि कोई भी जो पुराने गाने पर आधारित रील होती है वो जब वायरल होती है तो लोग उस गाने को भी सुनकर उनमें और जिज्ञासा बढ़ जाती है कि ये कौन सा पुराना गाना है। तो मैंने भी ये गाना इंस्टाग्राम के माध्यम से एक रील में ही सुना था और तब से ये मेरा फेवरेट पुराना गाना है। और नए गाने कितने भी आ जाएं, शायद बिल्कुल सही कहा गया है, ओल्ड इज गोल्ड।

0: तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपने ये गाना खूब एंजॉय किया होगा। और यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और लौटकर आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप जुड़े रहें मेरे यानी भव्या पांडे के साथ SBS हिंदी पर।
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
5: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
6: SBS, आपके तैयार होते ही तैयार है। Alexa, Google Home या Apple Smart Speaker के साथ जुड़े रहना आसान है। सुनिए ताजा खबरें, विचार और कहानियां SBS हिंदी से जब चाहें। बस कहें प्ले SBS हिंदी पॉडकास्ट। SBS ऑडियो, संगीत, रेडियो और पॉडकास्ट आपकी लय से मेल खाते हुए।
7: पूरी दुनिया की कहानियों का एक संसार SBS वर्ल्ड मूवीज पर। देखिए सातों दिन 24 घंटे चैनल 32 पर मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम करें। SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों टीवी शो और फिल्में मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहानियों की इस दुनिया को अपने फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या लैपटॉप पर देखें। आज ही SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं।
8: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
0: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। और इसी के साथ आप सभी को ईद की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। ईद मुबारक हमारे सभी श्रोताओं को। और आप लोग इस साल ईद कैसे मना रहे हैं, क्या कुछ खा रहे हैं, क्या आपके प्लान्स हैं, वो आप मुझसे ज़रूर बांटें। नंबर है 0439799767। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक गाना सुनाने वाली हूँ, उसकी धुन सुनकर आपको पहचानना है कि ये कौन सा गाना है।

0: चलिए जल्दी से अपने जवाब जब तक आप मुझे भेज रहे हैं हम कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं और बात करते हैं मनी यानी पैसे को लेकर। तो हाल ही में SBS हिंदी ने अपनी एक नई सीरीज लॉन्च करी है जिसको हम कह रहे हैं मनी मैटर्स। तो सुनते हैं इस सीरीज का दूसरा एपिसोड जहां बात होगी टैक्स रिटर्न में होने वाली डिडक्शंस और क्लेम्स की। एक बार फिर से आपको बता दूं कि इस सीरीज को स्वाति शर्मा आप तक लेकर आ रही हैं और इसका पहला एपिसोड जो है वो आप हमारी वेबसाइट यानी sbs.com.au/hindi पर जाकर फिर से सुन सकते हैं। फिलहाल सुनते हैं इस श्रृंखला का दूसरा एपिसोड।
1: आप सुन रहे हैं मनी मैटर्स SBS हिंदी की नई श्रृंखला, अब फाइनेंस की जानकारी आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूँ स्वाति शर्मा और आप सुन रहे हैं SBS हिंदी की सीरीज मनी मैटर्स। इस सीरीज के द्वारा हमारी कोशिश है कि हम उन सवालों के जवाब ढूंढ पाएं जो हर साल हमारी कम्युनिटी में अक्सर पूछे जाते हैं टैक्स सीजन के पहले। आज का टॉपिक है डिडक्शंस, यानी वो खर्चे जो आप अपने काम के लिए करते हैं और जिनकी वजह से आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। आसान भाषा में कहें तो अगर आपने साल भर में $70,000 कमाए और आपके काम से जुड़े $2,000 के खर्च हुए हैं जैसे यूनिफॉर्म या फ़ोन या फिर कोई कोर्स, तो ATO आप पर पूरे 70,000 पर नहीं बल्कि 68,000 पर टैक्स लगाएगा। मतलब हर क्लेम किया हुआ सही डिडक्शन आपकी जेब में पैसा वापस डालता है। पर इसमें एक कैच है, क्लेम करने के लिए तीन बातें ज़रूरी हैं। एक, वो खर्चा आपने खुद किया हो, दो, वो सीधे आपके काम से जुड़ा हो, और तीसरा, आपके पास उसका रिकॉर्ड हो, कोई रिसीट, इनवॉइस या फिर बैंक स्टेटमेंट। बहुत सारे लोग कभी कभार या तो ये जानते नहीं या रिकॉर्ड रखना भूल जाते हैं और हजारों डॉलर हर साल छूट जाते हैं। इसी पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं पुनीत सिंह, जो विक्टोरिया में एक रजिस्टर्ड टैक्स एजेंट हैं। पुनीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका SBS हिंदी पर। आपसे जानना चाहूँगी कि कौन से वो रोज़मर्रा के काम खर्च यानी वर्क एक्सपेंसेस हैं जो लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्लेम कर सकते हैं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी हमें इनवाइट करने के लिए। जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये देखना है कि जब आप टैक्स रिटर्न कराते हो थ्रू आउट द ईयर आपको अपनी रिसिप्ट्स लॉग्स अपने पास रखने होते हैं। देर आर प्लेंटी ऑफ डिडक्शंस दैट यू कैन क्लेम, बट होता क्या है कि हम रिकॉर्ड कीपिंग नहीं रखते तो हम वो भूल जाते हैं। जब हम टैक्स अकाउंटेंट को अपना टैक्स रिटर्न अदा करने के लिए करते हैं या फिर हम खुद लॉन्च करते हैं तो हम भूल जाते हैं क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग नहीं होती। देखिए जी, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, आप सिंपली अपना टैक्स रिटर्न जब करते हो आप अपनी एक लॉग बुक मेंटेन कीजिए। आप वर्क फ्रॉम होम का जो 70 सेंट का मेथड है उसको यूटिलाइज कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई रिसिप्ट की ज़रूरत नहीं होती, बट आपको एक प्रॉपर लॉग मेंटेन करना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा अगर आप मान लो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे, देर आर प्लेंटी ऑफ अदर एक्सपेंसेस सच एज अगर आप कोई अपने स्टडीज़ को इन्हांस कर रहे हो, अपने स्किल्स को इन्हांस कर रहे हो तो आप एजुकेशन एक्सपेंस करते हो, फ़ोन एंड इंटरनेट आपके पास होता है, यूनिफॉर्म होते हैं, प्रोटेक्टिव शूज़ होते हैं। सो बहुत सारी ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आप थ्रू आउट द ईयर अपने पास उनका रिकॉर्ड नहीं रखते और जब टैक्स रिटर्न लॉन्च करते हो तो वो भूल जाते हो, उसके कारण आपका काफ़ी टैक्स रिटर्न जो है कम आने के चांसेस हो जाते हैं। सो आई वुड डेफिनेटली इनकरेज कि आप अपने प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग या रिसिप्ट अपने पास रखिए।
1: तो पिछले कई सालों से बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इसके लिए क्या कुछ क्लेम किया जा सकता है और इसके लिए कौन कौन से रिकॉर्ड्स ATO को दिखाने पड़ते हैं?
2: जी, दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट स्वाति जी। जब आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, गवर्नमेंट ने दो मेथड्स अलाउ किए हुए हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम का मेथड यूज़ करते हो, फिक्स रेट मेथड यूज़ करते हो, आपको 70 सेंट्स पर आवर के अकॉर्डिंगली आप क्लेम किया जा सकता है। आप अगर 1500 घंटे काम करते हो तो 1500 × 0.70 आप क्लेम किया जा सकता है विदाउट एनी रिसिप्ट, बट एक प्रॉपर आपको लॉग बुक मेंटेन करनी होती है, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट। ठीक है जी। दूसरी तरफ अगर आप लेट्स से वर्क फ्रॉम होम के अकॉर्डिंगली अगर आप फिक्स रेट मेथड नहीं यूज़ करते, आप एक्चुअल मेथड यूज़ करते हो, तो आपके जो यूटिलिटी बिल हैं, जब आपका जो एक्सपेंसेस आप रियल टाइम पे हो रहे हैं, वो आप फोन, इंटरनेट, स्टेशनरीज, वो आप एक्चुअल विद रिसिप्ट आपको चाहिए, तभी आप एक्चुअल मेथड यूज कर सकते हो, बट फिक्स रेट मेथड में आपको लॉग बुक जरूरी है।
1: ऐसे कौन से डिडक्शंस हैं जो लोग क्लेम करने की कोशिश करते हैं पर ATO से रिजेक्ट हो जाते हैं और गलत क्लेम करने का कोई कॉन्सिक्वेंस होता है?
2: जी बिल्कुल, डेफिनेटली। लास्ट ईयर आपने सुना भी होगा न्यूज़ में, पीपल ट्राइंग टू क्लेम पराडा बैग, गुची बैग, दैट इज़ इररेलेवेंट, है ना। कई बार ऐसा होता है कि बड़े फैंसी हेडसेट्स लोग क्लेम करने की कोशिश करते हैं कि हमें ये वर्क पर्पज़ के लिए चाहिए, नॉइस कैंसलेशन वाले हेडसेट चाहिए, तो दे ट्राई टू यू नो मेक दोज थिंग्स इन अ वे कि हम जस्टिफाई कर लेंगे, बट ATO ऐसा नहीं है. दे आर वेरी वेरी एक्टिव, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट. जो चीज़ आप जेनरली क्लेम करना चाहते हो, जो आपके बिजनेस के लिए या आपके जॉब के लिए चाहिए, वो आप कर सकते हो. बट अगर आप बोलोगे कि मुझे यू नो लैपटॉप बैग, मेरे को फैंसी लैपटॉप बैग चाहिए या LV का लैपटॉप बैग चाहिए, आई डोंट थिंक सो यू कैन क्लेम दैट. सो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स जहाँ पर ATO ने वो डिडक्शंस डिनाई किए हैं.
1: जी पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया. ये थे वो डिडक्शंस जो आपकी जेब में पैसे वापस ला सकते हैं. अगले एपिसोड में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करेंगे, साइड हसल्स और कैश जॉब्स. ऊबर, ट्यूटरिंग, केटरिंग, कैश में काम, इन सब के टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में. SBS हिंदी पर इस अंश को आप तक लेकर आई स्वाति शर्मा, धन्यवाद. SBS हिंदी की नई श्रृंखला
3: मनी मैटर्स,
1: अब फाइनेंस की जानकारी आसान भाषा में.
3: इस अंश में दी गई वित्तीय जानकारी सामान्य प्रकृति की है. SBS ना तो इससे सहमत है और ना ही असहमत. अपनी विशेष परिस्थिति के लिए किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें.
0: तो दोस्तों, इस अंश को आप तक लेकर आई थी स्वाति शर्मा, और आपको बता दूं कि हर वेंसडे हम इस श्रृंखला का एक एपिसोड आप तक लेकर आएंगे. तो ज़रूर बताएं हमें कि ये प्रस्तुति आपको कैसी लग रही है. फिलहाल एक बार फिर से आपको आज की धुन सुना देती हूं जो कि आपको गेस करनी है, और इस गाने का नाम मुझे बताना है. तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाएं और मुझे भेजें अपने संदेश. तब तक आपको एक और बढ़िया सा गाना सुनाती हूँ जो कि मुझे लगता है हर रेडियो प्रस्तुति जो करता है उसके दिल के बहुत करीब है.

0: धड़कन बढ़ा देता है। हुक टर्न, ये नियम नए ड्राइवरों के साथ साथ कई अनुभवी लोगों के लिए भी चुनौती बना होता है। तो आखिर इससे लोगों को इतनी घबराहट क्यों होती है, आइए जानते हैं इस अगली रिपोर्ट में।
1: हुक टर्न मेलबर्न की सड़कों का एक ऐसा यूनिक ड्राइविंग रूल जो शायद सुनने में आसान लगता है पर कई बार अनुभवी ड्राइवर्स को भी कंफ्यूज कर देता है। आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और मैं हूं नबील हसन। आज हम बात कर रहे हैं मेलबर्न के मशहूर हुक टर्न्स के बारे में जो ऑस्ट्रेलिया के ट्रैफिक सिस्टम का एक यूनिक और जरूरी हिस्सा है। चाहे आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, हुक टर्न के वक्त थोड़ी सी नर्वसनेस तो आ ही जाती है। आखिर ये रूल बना क्यों, लोग इसे इतना चुनौतीपूर्ण क्यों मानते हैं और इसमें सबसे बड़ी गलतियां क्या होती हैं, आइए इन सब पहलुओं को समझते हैं और बात करते हैं रोड सेफ्टी एक्सपर्ट रौनक शाह से।
2: थैंक यू एंड नमस्कार।
1: रौनक जी, विक्टोरियन ड्राइवर्स की बात करें तो RACV के एक पोल के अनुसार 44% लोग हुक टर्न को सबसे मुश्किल मानते हैं, आपके हिसाब से ऐसा क्यों है?
2: Hook turn, when we look at the name, you know, अगर हम सोचते हैं कि hook turn क्या है, right turn है, left turn है, वो that create a big issue. तो जनरली हम लोग को ड्राइविंग टेस्ट में कि ड्राइविंग बुक्स में सिखाया है कि यू टर्न राइट फ्रॉम द राइट और यू टर्न लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ये hook turn ही ऐसा है कि आपको राइट टर्न में लेफ्ट से जाना पड़ता है, इसीलिए सब लोगों में बहुत ही कंफ्यूजन होता है और ये मेलबर्न में ही है। सो दिस इज लाइक द यूनिक प्रोडक्ट ऑफ द मेलबर्न। तो इसीलिए जो पीपल आर नॉट रेडी टू टर्न फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रीट टू द राइट साइड ऑन द ट्रैफिक लाइट, तो इसीलिए ये सबको बहुत इंटीमेटिंग लगता है। और स्पेशली जो लोग ट्रैवल करते हैं, अगर आप मेलबर्न में रहते हो और मेलबर्न में ड्राइविंग टेस्ट किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको हुक टर्न दिखाया गया है, आपने हुक टर्न स्टडी किया है और कोई कोई बार ड्राइविंग टेस्ट में भी आता है, तो इसीलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है।
1: जी अच्छा, जब नए ड्राइवर्स पहली बार हुक टर्न के बारे में सुनते हैं तो उनका रिएक्शन कैसा होता है?
2: जैसे अगर सबको हम बोलते हैं तो हुक टर्न, तो यू नो कोई बार वो हमारे सामने देखते हैं and they laugh at us and they say, are you serious Ronak? Are we turning right from left side of the road? To sab logo ko bahut hi funny lagta hai and you know people make a joke. But when they understand the logic ki iske ko hook turn ko kyun aise lena hai, kyunki Melbourne ka jo tram network hai which is the largest tram network in the world, तो ये जो हुक टर्न बनाया है वो इसीलिए डिजाइन ऐसा किया है कि ट्राम भी इजीली मूव हो सके, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़े एंड पीपल कैन इजीली एंड मेक द राइट सेफ टर्न।
1: क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और प्लानिंग एक अलग स्तर पे पहुंच रही है तो हुक टर्न का ये रूल शायद आउटडेटेड हो जाए?
2: आउटडेट में तो ऐसा है कि जैसे मैंने अभी बोला कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेन नेटवर्क है और इससे एफिशिएंसी भी एज पर उनके जो डाटा से तो 11 टू 16 सेकंड्स का उनका एफिशिएंसी बढ़ा है बिकॉज ऑफ द हुक टर्न। कितने लोगों को पता नहीं है कि ये लोग जब स्टडी करते हैं तो उनको वो भी पता होता है कि ट्रेन कितने कम टाइम में कितने मैक्सिमम पैसेंजर को कैरी करते हैं, ड्राइवर्स को भी बहुत लॉन्ग वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये हुक टर्न, यस इट इज कन्फ्यूजिंग, यस ड्राइवर्स को ऐसे लगता है कि ये इंटिमिडेटिंग है, बट व्हेन वी लुकिंग एट द डाटा पॉइंट ऑफ व्यू इट एक्चुअली वर्किंग वेल। तो आउटडेटेड जो आपने क्वेश्चन पूछा, आई डोंट थिंक सो अभी आउटडेटेड हो जाएगा। जब जब कोई भी रोड रूल्स या नेटवर्क चेंज होता है तो दे ऑलवेज लुक एट द प्रोडक्टिविटीज। अगर कोई ऐसा रूल्स नया आता है और ऐसी नई रोड कंडीशंस आती है तो डेफिनेटली दे विल ट्राई टू रिड्यूस द कंफ्यूजन।
1: अच्छा, हुक टर्न करते वक्त सबसे बड़ी और खतरनाक गलती कौन सी होती है?
2: सबसे डेंजरस है कि बिकॉज दे गेट पैनिक। आप मिडल में खड़े रहते हो या ट्रैफिक लाइट पे हो तो दे टर्निंग टू क्विकली टू अर्ली, क्योंकि उनको ऐसे फील होता है कि ये हो जाए इससे पहले मैं टर्न कर दूं, ये होता है मुझे लेफ्ट में नहीं जाना इसलिए मैं टर्न कर दूं। तो ये टर्निंग टू अर्ली दैट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक दे डू। कोई कोई बार वो ग्रीन लाइट पे खड़े रहते हो तो उनको पैनिक फील होता है। नंबर टू कि जब वो लोग ग्रीन में एंटर होते हैं वहां पे वेट करते हैं और जो अपोजिट साइड ऑफ द ट्रैफिक लाइट ग्रीन होता है तब आपको टर्न करना है, तो ये जो टाइम है ना, तो वो ड्राइवर बहुत ही पैनिक कोई बार हो जाता है बिकॉज ट्रैम भी आती है कोई बार, पीपल माइट बी हॉकिंग एज वेल, साइकिलिस्ट भी आता है, पेडेस्ट्रियंस भी आते हैं, तो वो टाइम पे आपको पूरा जो उसका सिस्टम है हुक टर्न कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए।
1: जी अच्छा, क्या आपके पास कोई यादगार, रोमांचक या फिर मज़ेदार एक्सपीरियंस है लोगों को हुक टर्न या ड्राइविंग लेसन से जुड़े हुए?
2: इसमें क्या है कि एवरी पर्सन व्हेन वी ट्राई टू टीच देम, वो लोग तो पहले उनका रिएक्शन ऐसे आता है कि शॉकिंग, क्योंकि ये मेलबर्न का यूनिक प्रोडक्ट है। अगर आप कोई ओवरसीज से आते हो या यहाँ से भी इंटर स्टेट से आते हो, तो अभी भी जैसे कोई सिडनी से या एडिलेड से मेलबर्न में आता है और वो हुक टर्न बोलता है तो दे गेट कंफ्यूज। तो एक दो बार ऐसा हुआ है कि पीपल लाफ एट अस एंड दे से कि रौनक आर यू सीरियस, आई एम टर्निंग फ्रॉम हियर, ये गाड़ी मुझे ठोक नहीं देखी ना, ये ट्रेम अगर बीच में आती है तो मैं क्या करूंगा, कैन आई स्टे ऑन टॉप ऑफ द ट्रेम्स। तो ये जो फनी एक्सप्रेशन होता है ना उनका, फेशियल एक्सप्रेशन, दैट इज काइंड ऑफ फॉर अस एज वेल इज इंटरेस्टिंग।
1: रौनक जी, क्या आपको लगता है कि मेलबर्न के अलावा दूसरे शहरों में भी हुक टर्न की जरूरत है या उसे अडॉप्ट करना चाहिए?
2: हुक्टन, सी व्हेन वी लुकिंग एट द डाटा एंड स्टैट्स, मेलबर्न के लिए ये काम करता है। एंड मेलबर्न में ये जो हुक्टन का सिस्टम है उससे एफिशिएंस भी बढ़ा है। तो अदर सिटीज में अगर उनके ट्रैम नेटवर्क अच्छा है, वेरी बिग नेटवर्क, उनको ट्रैफिक सेंस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कार का ट्रैफिक, ट्रेन का ट्रैफिक, साइकिलिस्ट, पेडेस्ट्रियंस बहुत ज्यादा है, तो हुक्टन विल डेफिनेटली सपोर्ट दैट मूवमेंट्स। पर अगेन इट आल्सो क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि ये यूनिक प्रोडक्ट्स है और जहां पे ट्रेम्स या लाइट रेल रहती है वहां पे ही वी कैन इम्प्लीमेंट दिस हुक्टन।
1: एक आखिरी सवाल रौनक जी, ऑस्ट्रेलिया के अलावा किसी अन्य देश में भी क्या ऐसे कोई यूनिक ड्राइविंग रूल हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे?
2: नबील जी, यू बी सरप्राइज, जैसे आपका आपने जो हुक्टन का बोला और मेलबर्न में हुक्टन इज अ यूनिक प्रोडक्ट, ऐसे यूरोप में और जापान में भी टू स्टेज टर्निंग का है, वेरी सिमिलर टू द हुक्टन हम यहाँ करते हैं, बट वहां पे खाली साइकिलिस्ट और जो स्कूटर्स होते हैं उनके लिए ये अलाउ है। तो ये हुक्टन ऐसा नहीं है कि खाली ऑस्ट्रेलिया में ही है, द कंसेप्ट इज अ बिट कॉमन इन अदर कंट्रीज एज वेल। जैसे यूएसए में है तो मिशिगन में एक ऐसा है कि नो डायरेक्ट राइट टर्न है, तो ड्राइवर को थोड़ा स्ट्रेट जाके यू टर्न करना पड़ता है और उसके बाद वो लोग लेफ्ट टर्न लेते हैं। तो अगर आपने मेलबर्न में ड्राइव किया है, यू टर्न किया है, और अगर आप मिशिगन में जाते हो तो इट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट वे। तो हाँ, तो अलग अलग कंट्री में, अलग अलग सिटी में, डिपेंड ऑन द लोकल ट्राफिक, वो लोग थोड़े कस्टमाइज करते हैं रूल्स।
1: तो ये थी हमारी बातचीत रोड सेफ्टी एक्सपर्ट रौनक शाह के साथ।
2: थैंक यू जी, ड्राइव सेफ।
1: अगर आप ये पॉडकास्ट एक बार फिर से सुनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi पर जा सकते हैं। SBS हिंदी पर यह रिपोर्ट आपके लिए प्रस्तुत की नबील हसन ने। इस ऑडियो पॉडकास्ट में व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं, SBS ना तो इनसे सहमत है और ना ही असहमत।

तो दोस्तों, गाने का नाम तो आपको पता ही चल गया होगा। इस धुन का जो नाम है, जो गाना है, वो है देखा एक ख्वाब, सिलसिला फिल्म है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। जल्दी से आपके नाम पढ़ देती हूँ। विनीत जी, निर्मित जी, तेज जी, यावर जी ने संदेश भेजा है और ईद मुबारक भी कह रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। रिचि जी, विजय, सैम जी, स्तुति वैद्य, पीयूष जी ने भी सही जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने संदेश भेजा है कि उन्होंने मुझे खूब सारे संदेश भेजे हैं जो कि मैं पहले नहीं पढ़ पाई, लेकिन अब पढ़ देती हूँ। साथ ही संदीप कुमार जी का जो जवाब है बिल्कुल सही है। सुनील जी, राजेंद्र वोहरा जी, आलोक जी, हर्ष जी, अकबर मजारी और डैनियल मजारी सिडनी से। उसके अलावा सुरेंद्र चावला जी का जवाब भी बिल्कुल सही है। और विक्रम बड़वाल जी की ओर से एक बहुत ही प्यारा सा संदेश आया है जो कि पढ़ देती हूँ। लिखते हैं, नमस्कार भव्या जी, ओल्ड इज गोल्ड सही है, पर सोने को सुनार ही चमका सकता है। आपका सुंदर प्रस्तुतिकरण इन पुराने गानों में नई चमक भर देता है। आज तो मजा आ गया। साथ ही इनका तो जवाब जो है वो सही है ही। तो आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आप में से कई लोगों ने मुझे आज कहा है कि पुराने गाने जो होते हैं वही बढ़िया होते हैं, नए गानों में ऐसी बात नहीं है। तो अपने अगले शो में मैं एक नए गाने की धुन लेकर आऊंगी और आपको अपनी प्लेलिस्ट से कुछ ऐसे गाने सुनाऊंगी जो हैं तो नए ज़माने के, लेकिन पुराने ज़माने की फील देते हैं। मतलब उन्हें सुनते ही आपको ऐसा लगता है कि जो धुन है, जो बोल हैं, वो इतने सुंदर हैं कि लगता ही नहीं है कि आज के ज़माने के वो गाने हैं। तो ये हम अगले हफ्ते करेंगे। फ़िलहाल आप सभी का मेरे साथ SBS हिंदी पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। फिर हमारी मुलाकात होगी जल्द। तब तक आप सुनते रहें SBS हिंदी। Thank you.

वक्त हो आप नमाज के वक्त पे याद आते हो, बड़े कम वक्त हो आप नमाज के वक्त पे याद आते हो। अगर आपको ये लगा तो बिल्कुल गलत लगा कि आप खुदा के बाद आते हो, कि आप खुदा के बाद

वाला गर्दा उड़ा दिया। अरे गर्दा उड़ा दिया।

0: कभी हीर तो कभी रांझा बेवफा हुआ था, मैंने ये बस कहानियों में सुना हुआ था। तेरे बाद ये धड़कता हुआ पुर्जा वहां भी ना लगा जहां लगा हुआ था। उतने ही करीब आ गई थी मौत जितने करीब तो उसके खड़ा हुआ था, जितने करीब तो उसके खड़ा हुआ था।
1: SBS South Asian.

कांटे काट मेरे दिल पे जुबान है, भेद दिल ये ऐसा कमाल है। सरा पूछूं आज किसका ख्याल है, रेत की रानी है किससे कमाल है। सुरमय भरी वो है बला, देख के उसको जमाना जला। माया का जाल है उसकी कला, उसके इशारों पे मैं हूँ चला। जब वो चले संसार झुके, जब वो मुड़े तरनी बहे, जब हाथ उठाए आंधी रुके, जब पल के झुकाए तो वक्त रुके। डरता करता फिर भी है मेरा मन, नाम सुन के बढ़ जाए धड़कन। मिट्टी पे पड़ जाओ उसके कदम, करते सक जमीन को फिर से नरम।

समंदर के जैसे बढ़ती लहर, पवन डर के जैसे ढाती कहर, सोने सा चमके उसका बदन, छू दे तो अमृत बन जाए शहर। असलिया चेहरा उसे सब है पता, चाल है गहरा उसे कुछ न छुपा, दिल है जो ठहरा उसे नहीं है पता, क्या तेरी माया जरा मुझे भी बता। ढूंढू मैं उसको कहा, होठों पे जिसके लिपटा जहां, इतना दर्द क्यों मैंने सहा, जब मिलने ही थे दोनों जहां। रुक गई मेरी सांस भी, महसूस करने की आस भी, खुल जा मुझ में जैसे चाशनी, कट गई ये साली रात।

चलो आखिरी मुलाकात को यादगार बना देते हैं, जाते जाते तेरा ये वहम भी मिटा देते हैं। एक ही खासियत थी तुम में कि तुम्हें हम चाहते थे, आज तक यही झूठ कहा था तुमसे, चलो अब सच बता देते हैं।

0: वो जा रहा है कोई शब्द वीरा है मैं कदा फुम सागर उदास तुम क्या गए के रूठ गए दिन बाहर
1: Your news from here and hits from home SBS South Asian

0: Your news from here and hits from home. SBS South Asian.
1: कृपया ध्यान दीजिए.
2: गूंज उठी शहनाई.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

सुकून मिला है जब उस टाइम मेरी बात हुआ है। हजार रात में वह भी एक रात हुआ है। आंख उठा के देखे जब वह मेरे को नहीं, वह एक पल भी पूरी कायनात हुआ है। वह एक पल भी पूरी कायनात हुआ है।